आया शमशता हमको पुन्ना निष्मला की केतम तम कथे मवी कला हम आया हम आया चमाया वो चमा की आय चमाया वो चमल मुखी नौ कृष्ण ना कमी वो हम आया हम आया ए मोय मी वो ए मोय पू